0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང རིམ་ཅི་ ཁི་ཡོང་ཅི་དེ་མ་ཏ་གོ་ལོ་ཏ་ཐམ་ཁི་ཡོང་ཅི་དེ་མ་རིམ་ཅི་ཏ་མུ་ཤི་ཤི་ཏ་ཁི་གོ་ནོ་རིམ་དི་ཡང་ག་ཆུ་ནོ་རེ་ཏ་ན་གུ་གཏ་ཁ་ཅི་རི་ཏ་ནོ་མུ་ཤི་ཏ་ནོ་མ་རེ་ཁ་ཅི་རི་ཏ་ནོ་སོན་དེ་ཅི་ཁ་ཅི་རི་ཏ་ནོ་ཁོ་ན་ཇེ་མ་པ་ཏ་ནོ་ཁ་ཏ་ཡ་ལ་མ་ལ་སོན་དེ་ཟུང་ཀ་ཏི་ཤི་ཤི་གི་ཁ་ཏ་མ་གི tangne ti tangde pa tangde ti nga ka jiru tsne ri o mo shi je ji ma de ka jiru tsje ti nyang de do ko ne ke ma re na ma na kan do ko yin re ne ma nu yin wa nga ji la ji ko ne ri ya ta re na a de ka shi shi ji me ha shu ku ha che do ya de ka che ta na ka ka ma chu gu ne na di gu ne di ti sho ra ta ka ka ma gu ni she ku ne ti sha ta na ta che la ja ja no ar du re ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱡᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱯᱨᱮᱭᱚ ᱛᱤᱡᱨᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱡᱚ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟᱭ ᱫᱚᱨᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱛᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟ ᱚ ᱟᱫᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤ ᱜᱩᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱣᱟ ᱪᱚᱯᱨᱮ ᱡᱚ ᱯᱟᱞᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱪᱚᱯᱨᱮ ᱡᱚ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱚᱝᱟ ᱞᱮᱢᱮ ᱨᱤᱱᱪᱮᱱᱥ ᱤᱥᱤ ᱢᱮᱞᱚ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱛ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱮᱵᱚᱴᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱷᱚ ᱠᱤᱣᱤ ᱪᱷᱩᱥᱛ ᱪᱮᱯᱨᱮ ᱛᱮᱱᱪᱤ ᱩᱢᱤ ᱡᱟᱡᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱞᱤ ᱛᱚ ᱪᱮᱪᱮᱱᱤ ᱛᱚ ᱯᱮᱥᱟᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱜᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱮᱯᱤ ᱛᱮᱡᱟᱞᱟᱢᱤ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱠᱤᱛ ᱫᱤᱱᱚᱱᱫᱮᱨ ᱜᱟᱞᱮ ᱫᱤᱱᱚᱱᱫᱮ ᱪᱚᱯᱨ ᱡᱚᱯᱟ ᱡᱤᱪᱮᱨ ᱤᱥᱤ ᱢᱮᱞᱚᱱᱫ ᱜᱚᱱᱚ ᱡᱤᱛᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱮ ᱭᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱡᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱝᱨᱮ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱚᱱᱚ ᱞᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱡᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱝᱨᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱚᱣᱚ ᱪᱟᱝᱨᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚ ᱪᱟᱱᱪᱟ ᱠᱩᱢᱮ ᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱪᱚ ᱢᱮᱛᱷᱟᱠᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚ ᱪᱟᱱᱪᱟ ᱠᱩᱢᱮ ᱪᱟ ᱭᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱛᱤ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱮ ᱢᱚᱜᱩᱜᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱞ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱩᱝᱟ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱠᱟᱨᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱚᱭᱱᱤ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢᱵᱟ ᱱᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱨᱮ ᱫᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢᱵᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱨᱮ ᱫᱮ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱡᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤᱡᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱫᱤ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱤᱡᱩ ᱱᱟᱵᱩ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱡᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢ ᱵᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱛᱩ ᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱭᱤᱱ ᱫᱚᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱟᱯ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱯᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱵᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱫᱨᱤᱯᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮᱨᱟ ᱚᱱᱢᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱱᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱚᱱ ᱱᱚᱜᱚ ᱛᱚᱱᱫᱮᱨᱟ ᱚᱱᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱱᱛᱚ ᱡᱤᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮᱥᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱱᱫᱮ ᱟᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱝᱟ ᱛᱤᱡᱨᱮ ᱪᱷᱩᱝᱟ ᱛᱮᱥ ᱭᱟ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱥᱮᱥ ᱠᱤᱣᱟ ᱛᱤᱡᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢᱮᱞ ᱜᱩᱱᱟᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱥᱮᱥ ᱠᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱥᱮᱥ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱜᱟ ᱤᱪᱤᱪᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤᱱᱡᱟᱨ ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱥᱮᱥ ᱠᱷᱤᱫ ᱡᱮᱱ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱮᱥ ᱠᱷᱤᱫᱤ ᱪᱚᱪᱩ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱠᱩᱱᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱠᱩᱱᱟᱨ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱪᱚᱱᱟᱨ ᱪᱮᱛᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱪᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱤᱪᱤᱪᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱩᱱᱩᱱᱟᱱᱟ 刚给学那工作生个学子的刚给学那口里的那里学七个学子的那就这是你给的那里学亲的东西什么提什么那送个西谷酒吧我都已经这么你喜欢什么没脸的这个东西吃到还这个西谷西谷要买一把还这没不没不要买一把学玩嘛这个吃这个啥呢
1: 他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的理解他的
0: 마바가 세나다 사자 거나 마바가 자야도 거나다 아 사자가 기무시나다 마바글라나 마쳐도 거 다 아슬로 초통아 마바티지 위에 덴덴덴트케티 덴덴트스나 안토르 케티 데마 토나라 니나수 푸소데시 콜라 마바티가 메딜렌트케티 드슬로 소야 마바 위원어데 나빠 가탕데 티도 코티치나 마바티 쳇토바포르 토바 산지 쳇덴데레 хуй сангиго чисун тага амабага мешин тага напага мема тона ленджер сангиго чисун тане нямба пу маджна ян ленджер отина аменти чиго хуйра аменти чиго хуйра тине напала дрину гуга напала дрину ти гинда кочо хуйра на ньороаре Nanyuwa gendak kunchukle. Tina napashi nali chukuna chachenda chusambun zongukuya. Amamba, amen, nanyurpa da chusambun zongukuya. Arang Korea dhinak jamsuli tarwala hche tumbapu, hche ngi chi kunchuk, hche dhapi chuk gendak kunchuk da chusambun zongukuya. Tita kata chusambun zongukuya jinsenda tani unarim. Ya tina... ke tomba po sanje kon chuka tsunjena ke tan son tan tri tan yuan de tan chen li ji yuan de jo pa la ju zhe me la de a te wo du yuan de chi mo du ge xie zhe na xie li tai zhe de me ke huan zhe zhe na ji ren bu qi ge ge sen ba ge dang na song lu ka dong hong wu ka la zhe zhe ni na xie rang zu zhe wi a dong zhe zhe na ka se bie dong pe men zhe zhe chu zhe yuan de jo pa ge de de le de xia jia chong qian warna gong jeli so so per per per per tangawa ka chi ambe ku be ku nu te prasa mela nam ka ge thala thi prasa mela ba na ma ku ren ge shok te ge ma ta ba ta no te mo ti nu jin ji ke lo ma ge san ji chen de ni ge yon de jeli ayo ta ma de shu gu nu ti yon de je che mela ma shi na ma mo ren ge chi ge se ajak kasal arkha ga tak mandama ta yo ma de shutz ne mo khui ti tong tong ar go ka shukse ka mandama lon ma to yo de she che mala shukori prevalon ma re no ti ro ti ri ya de de tarun khatang ga sung ga yo de ni thoni so na tmo de sung chi ne ta sung na ya ta ma ne ta so so ko de ne ha ye ka ta la ta no je ka ta ta ta ma ye ka na to go a ken che da ne che te ba ta che ka ta de ki chi ten to de ngachengi te tongma zanta daga lhote laga lhote nyakka lhoma ga khanna me ju ta mo ta kana chu ta go ka chena sanji chunden di ga sonje ta to sanji chunden di ga dana a ja rik lhoma yu ko wo rik lhoma yu ko surik lhoma yu ka ja to haru ka selama ga lhoma yu ka hog lhoma yu ka tmo lhoma ka tu me chu no mari me chu no ka tu me chu no тиг мэтэк лома титг тенчэрг ранг допа мэчэг кэй дату хинандок кэй нянг хинандок кэй мэжо хинандок кэй цама хинандок кэй амай хинандок кэй хчи хинандок тито тэнчэ по санжи чэдэн дэг нэна ёй мин дэтг хинандок дэ санжи сэтда санжи сонья чик кача чка чик ओके जे के सुके इंच के रबे के कटु रंग कट को कुंजु ने ती कुनु में से के कला मीना ती दुकु ती खिवाते जला थुजु चदना ते नाम जु गति नाम जु न थु ने खिचा को गने का करना वैसे खदे इसी तो कम न है फिर कम न है ओए कस के काचे सों से काचे सों से ता तो निंगु छन चाचे दन दिस सों दे कमे कने जिनो गे नना वके किदा गे मे किनो गो आमे सुक आ जारुक सेंटम बाक वयुक तहनुक वके खदे इसी तंग काची सों छरे तिरंग गे निमा काची सों छगो नकाता काची जिग दो जरा सों नुगो जिगतरा कसंग तो सोना नका छे नाबा है छ ता तो जानी गु जोंआ खो तसने रे Sinaka jiji tato chani mazgunu ul homa chik mekiz guka. Kuwate, chani mazgunu ul homa chik mekiz guka. Tini nga ta chani arangak ketu kuu tani riyan. 我们的 나타홀랑가라트나라랜츠타토회저라송케 월드 디다드 치조파 치산바 치지샹 치 엔점바 치라톰바 치지샤와셰바 치지슈여 치조파 한숨 촉과 뜻송 게더 꾸쪽과 연대나 드카송과 드카송은데 왜저과대 시트근 저우누 치근데오까트나 치마와드 군우 치톰바그는 또연데 치마와 시와 치톰비는 또연 치조파 시와 치냐슬람비는 또연 치조파 시와 치냐슬람비는 또 타파터파야 뜻샤나로 쇼타적쇼 치삼바 군우 치삼바 군우 치라샤파 시바 타파야 뜻샤다적시 치라샤파 시위는 또연 七级上是咕噜七种月日言七级上是咕噜七种月日言七级怎么办咕噜打扮怎么办啊七级怎么办咕噜打扮怎么办七拉东巴咕噜七拉一起为能等言让他得到那路都那路都的啊七拉东巴咕噜让他得到那路都那路都 七拉东巴呢？七拉一七为能等于七级小娃些班呢？七级姑娘些就不是些班，啊，七级姑娘人就不是些班了，七拉小娃些班子不？七级姑娘些就不是些班，七级小爷子咕噜七年为日，我七弟七妈七送谈结不？七年为日，姑娘人啊。 七弟七妈穷生谈结不七年为日，第一路为人产生了，长期接单把耕耕脚子呢，就自己就跟这些娘子，长期接单把耕耕脚子呢，就那等成这个就过了。啊，给老些人这个给人家的有把酒，是不个？对那他七弟穷妈穷，七妈穷生谈结不七年一路等于过过来了。
1: 啊，曾经觉得的那么个人个看不完的，啊，都比人蛮年吧个，啊，都把拉你哇，这蛋白就些个牛啊啦，就些不牛啊啦，啊，都讲那边倒花，这蛋白就些个什么啦，啊，等于去了前年些吧，这蛋白就些个十万啦。
0: 这就是我要在那上几节蛋白药的，今天那用骨子都骨的呀，也是连着吃多呢呢，蛋白希望上个根据骨干，都是根据骨干的，它这主要的头头的呀，弄的，都是根据骨干的。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ